Baiklah, kau ingat sekaya beli kemitil le, ate, kau ingat ala, dah beli ate, dok, ayah sabda yang mau yunni, dokis beli tu le yunni, ayah sabda lama sam kuasi kiwil, ingki ini ingki ayo, embeli ate embeleng, awas purdu emka, indo al potai, indo al do potai. इंदौर दो पताई के दुरासा बनी हुआ इंदौर दो पताई के दुरासा बनी हुआ और दो इन्हें देले उत्तम सोंगास के इन्हें स्पाले थी नमँग आएंगे इलों जी दी नमनी जाएं दो

Baiklah, kau ingat sekaya beli kemitil le, ate, kau ingat ala, dah beli ate, dok, ayah sabda yang mau jundi, dokis beli tu le jundi, ayah sabda lama sam kuasi kiel, ingki ini ingki ayo, beli ate beli, awas podo yang ku, Indo al potai, Indo al du potai. इंदौर दो पताई के दुरासा बनी हुआ इंदौर दो पताई के दुरासा बनी हुआ और दो इन्हें देले उत्तम सोंगास के इन्हें स्पाले थे नमँग आये हैं इलों ये दी नमनीं जाएं दो बंदीं जरूरी सी जगह लंग सी जलों मालं के बिलों ना इलाही नम ना dua kebasalom dora abujilom kanin jumo wala kan jumo kagisin dora kher wala ka dora sin kher ba gamma ya lekin wala gamma ya kin ile ungi nazdidon tabun kabbe ke bele dan bele mitil nas dan wen kwa asan injalom do pata ke dora sa bunyo namaran do pata ka duai ine do pata alpo do melen ये दो काल से पहले ये दो काल से पहले दो अल काल हुई कोई दे मरंग हुआ कली भाई अल क्वासी रू दो अब काल हुए यंग पिए तो किन दो लोग से हमी तैना पोरंगा में कालून दो ला पिए तो कसं कालून दो ला सब आम ना इंसी kiro kalun oram ilain nakali baye aljundi na duo bi duo la duldi bi duldi dinale nyetin ye kali baye na kwasi dumma jingiti